0: सजावट के लिए जापानी मिर्च के पच्चे पत्ते तैयार रखिए या फिर पिसी हुई जापानी मिर्च सांशो इस्तेमाल कीजिए। चावलों के लिए आपको ज़रूरत होगी 300 ग्राम कच्चे चावल और 430 मिलीलीटर पानी की, या अगर आप चाहें तो 600 ग्राम पके हुए चावल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जापानी अंदाज के चावल पकाने के लिए तीन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, चावल धोना, पानी की मकदार और पकवाई का दुरानिया। तो आइए आगाज करते हैं कि चावल कैसे धोए जाएं। हमेशा चावलों को किसी छलनी में डालकर धोइए।
1: एक बर्तन में पानी भरकर उसके अंदर एक छलनी रखिए। चावल साफ करने के लिए उन्हें तेजी से 5 मर्तबा हिलाइए ताकि मिट्टी और महक वगैरह साफ हो जाए। उसके बाद फौरन छलनी बाहर निकालकर पानी फेंक दीजिए। फिर अपनी उंगलियों को फैलाते हुए इस अंदाज में चावलों को मिलाइए जैसे आप पीटने वाला कोई चम्मच इस्तेमाल कर रहे हों।
0: चावलों में उंगलियां घुमाते हुए दानों को एक दूसरे के साथ रगड़ते रहें। इस अमल को जापानी में तोगु कहा जाता है। चावलों को 20 मर्तबा मिलाने के बाद छलनी को दोबारा पानी भरे बर्तन में रखिए और निस्बतन आहिस्तगी से हिलाते हुए साफ कीजिए। पुराना पानी फेंक कर नया भर लीजिए। अब छलनी को पानी भरे बर्तन से निकाल लीजिए।
1: छलनी को किसी छोटे बर्तन पर रखकर तमाम पानी निकल जाने दीजिए। घो के चावलों से निकलने वाला पानी अभी भी गदला होगा, लेकिन चावलों को दोबारा पानी से निकालना काफी है। अहम बात यह है कि चावल साफ करने का अमल तेजी से मुकम्मल किया जाए, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ ज्यादा वक्त लगाएंगे तो चावल भुरभुरे हो जाएंगे।
0: 10 मिनट के बाद जब पानी निकल जाए तो चावल किसी बर्तन में डालिए। अब पानी की दुरुस्त मकदार का इजाफा कीजिए और 30 मिनट के लिए चावलों को पानी में भिगो दीजिए।
1: अब बर्तन पर ढक्कन रखकर दरमियानी आंच पर पकाइए। पानी में उबाल आने के वक्त से पकवाई के दौरानिये का ख्याल रखना जरूरी है, लिहाजा देखते रहिए कि पानी में उबाल किस वक्त आ रहा है। ढक्कन उठाने के बजाय आवाज या देगची से निकलने वाले बुखारात से अंदाजा करने की कोशिश कीजिए।
0: जब पानी में उबाल आ जाए तो आंच धीमी कर दीजिए और टाइमर पर वक्त सेट करके ठीक 12 मिनट तक पकाइए।
1: वक्त पूरा हुआ, आइए अब आंच बंद कर देते हैं। अभी ढक्कन को मत उठाइए और 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस अमल को जापानी में मुराशी कहा जाता है। चावल इस अमल के बाद ही तैयार होते हैं।
0: जब चावल दम पर हो तो उस दौरान सार्डिन तैयार कर लीजिए। सार्डिन को कटिंग बोर्ड पर रखकर इसके छिलके उतारने से आगाज कीजिए। मछली के बैरूनी हिस्से पर दुम से सर की जानिब छुरी चलाते हुए इसके छिलके उतार लीजिए।
1: सार्डिन मछली जितनी ज्यादा ताजी होगी उतने ही इस पर छिलके मौजूद होंगे। उसके सर को अपनी उंगलियों से पकड़ लीजिए और मछली को पलटते हुए तमाम सतह से छिलके उतार दीजिए। उसके बाद सर को उसकी निचली तरफ से काट दीजिए। अब हम इसे बटरफ्लाई अंदाज में खोलेंगे।
0: मछली के पेट की निचली जानिब एक सख्त सी जगह होती है, लिहाजा छुरी को उसके मुखालिफ सम्त तिरछा करते हुए इसे काटें। यहां से शिगाफ बनाते हुए मछली की दुम की जानिब मौजूद सुराख तक ले जाइए। अब इसकी अंदरूनी आंतों को साफ कर लीजिए। चारों सार्डिन मछलियों को ऐसे ही साफ कीजिए। एक प्याले में काफी ज्यादा पानी डालकर मछली को धो लें। दरमियानी कांटे और पसलियों में अभी कुछ खून लगा रह गया होगा, उसकी वजह से मछली में बसांत पैदा हो सकती है, इसलिए इसे अच्छी तरह साफ कर लीजिए। प्याले में ताजा पानी लेकर मछलियों को दोबारा धोएं और पेपर टॉवल से इजाफी पानी खुश्क कर लें।
1: और अब बारी है तेबिरा की, यानी सार्डिन को बटरफ्लाई अंदाज में खोलने की। सबसे पहले सार्डिन को हथेली पर इस तरह रखें कि हथेली का रुख ऊपर की जानिब हो। जिस हिस्से से आपने मछली का सर काटा है उसे दाएं जानिब रखिए। दुम का हिस्सा बाएं जानिब हो और पेट आपके चेहरे की जानिब हो। अपने दोनों अंगूठे

0: वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट कैच ऑफ द डे का, जिसमें हम आपको खाना पकाने से मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं। आज हम बात करेंगे दोयो दौरानिये के दोयो नो उशी नो ही, जिसे बैल का दिन भी कहा जाता है। वैसे गुल साहब, जब आप ये नाम बैल का दिन सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है?
1: सोफिया, मेरा ख्याल है कि ये मौसम गर्मा और उनागी यानी बाम मछली से मुतल्लिक है, क्योंकि हर साल इस दिन में उनागी रेस्तरानों और डिपार्टमेंट स्टोर्स के बाहर में बड़ी तवील कतारें देखा करता हूं।
0: बजा फरमाया गुल साहब आपने, लेकिन दर हकीकत दोयो दौरानिया बैल का दिन महज मौसम गर्मा में नहीं होता।
1: अच्छा।
0: 1872 तक जापान में वक्त का अंदाजा लगाने के लिए शमसी कमरी कैलेंडर राइज था। उस कैलेंडर में हर मौसम यानी बहार, गर्मा, खिजा और सरमा के आखिरी 18 दिनों को दोयो कहा जाता था और उसे आने वाले मौसम की तैयारी का दौरानिया ख्याल किया जाता था।
1: सामिन, मौसम गर्मा का दोयो साल का गर्म तरीन वक्त होता है। तकरीबन 250 साल कबल एदो दौर में गर्मी की शिद्दत से होने वाली थकान को दूर करने और दोयो दौरानिया के डे ऑफ द ऑक्स यानी बैल के दिन पर होने वाली बीमारी से बहाली के लिए कुछ सेहत बख्श इकदाम करना काफी मारूफ हो गया था। जापानी हरूफ तहजी के हर्फ ऊ से शुरू होने वाली किसी चीज़ को खाना भी अच्छा समझा जाता था, क्योंकि दी ऑक्स या उशी भी ऊ से शुरू होता है। और हुआ कुछ यूं कि फिर उस दौर में उनागी का बया के प्याला खाना बहुत मकबूल हो गया। गाड़ी का बया के सॉस का नमकीन और मीठा जायका उनागी के साथ ज़बरदस्त लगता है। ये गजाइत से भरपूर होने के साथ साथ उनागी की मट्टी जैसी महक को भी दूर करता है। आजकल जब लोग उनागी के बारे में बात करते हैं तो कबायाकी फौरन जहन में आता है।
0: उनागी में हयातीन यानी विटामिन की बड़ी मकदार मौजूद होती है और जापानी अफराद आला दर्जे की गजाइत के हामिल एक डिश के तौर पर गुज़िश्ता 1000 साल से इसे खा रहे हैं।
1: जी, आज के दौर में भी बहुत से गजाइत भरे खाने दस्तियाब हैं, लेकिन जापानी अफराद अभी भी मौसम गर्मा में उनागी कबायाकी खाने के मुंतजर रहते हैं। उनागी कबायाकी जापानी अफराद के लिए एक रिवायत बन गया है।
0: सामिन, अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे जापानी खाने पकाएं। उम्मीद है आप आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को रोहिणी रमन का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: रोहिणी जी, क्या हाल है? जापान भर में जारी गर्मी की इस प्रचंड लहर में अपना सही से ख्याल तो रख रही है ना?
1: जी बिल्कुल रख रही हूँ। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने भी तापघात की चेतावनी जारी कर लोगों से तरह तरह की सावधानियां बरतने को कहा है। पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करने को कहा है।
0: जी, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन गर्मियों के दौरान होने वाले तरह तरह के उत्सवों और मत्सरियों का भी आनंद ले। जैसे बीते दिनों मुझे टोक्यो के एक लोकप्रिय इलाके ओदाइबा में आयोजित हानाबी यानी आतिशबाजी का लुत्फ उठाने का मौका मिला।
1: अरे वाह, ओदाइबा की हानाबी! करीब 10 साल पहले जब मैं पहली बार जापान आई थी तब मैं वहाँ रहती थी।
0: अच्छा।
1: तब देखी थी। जी बहुत मजा आया था। समुद्र किनारे बैठकर ठंडी ठंडी बयार का आनंद लेते हुए आसमान में टिमटिमाती रंग बिरंगी आतिशबाजी सचमुच कमाल की थी।
0: अच्छा, आपने भी देखी। वैसे जानती हैं, जापान भर में गर्मियों के दिनों में हानाबी के सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं। छोटे बड़े मिलाकर लगभग 1000 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
1: अच्छा, यानी इन दिनों हर सप्ताह कहीं न कहीं

0: खाना भी का कार्यक्रम
1: जी,
0: लोगों के मनोरंजन का जबरदस्त इंतजाम है। ये तो सुना है कि हर आयोजन में 10 से 30 हजार आतिशबाजी छोड़ी जाती है। वैसे ये बताएं कि हानाबी का आयोजन गर्मियों के दिनों में ही क्यों होता है?
1: असल में इसके कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मौसमी कारण हैं। इनका इतिहास जापान के एदो काल में जाता है। 1733 में अकाल और बीमारियों से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति और सम्मान तथा भविष्य में आपदाओं से संरक्षण की प्रार्थना के रूप में इनका आयोजन किया जाने लगा। इनमें सबसे प्रसिद्ध रही सुमेधा नदी पर होने वाली आतिशबाजी। उसके बाद ये परंपरा देश भर में फैल गई। गर्मियों की रातें सुहावनी हुआ करती थीं और लोग घरों के बाहर निकल सकते थे। साथ ही पुराने जमाने में धान की रुपाई के बाद और कटाई से पहले किसानों के पास थोड़ा समय होता था जिसमें वे इनका आनंद ले सकते थे।
0: अच्छा, यानी वक्त के साथ हानाबी गर्मी के दिनों की मातसुरियों का अहम हिस्सा बन गई।
1: जी।
0: अच्छा, जब लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र या नदी किनारे इनका आनंद लेने जाते हैं। मैंने देखा है कि इन मातसुरियों में मेले भी लगते हैं जिनमें पास पड़ोस के लोगों के साथ मिलना जुलना भी हो जाता है।
1: जी हाँ, और अक्सर लोग गर्मियों की पारंपरिक जापानी पोशाक युकाता में दिखाई देते हैं।
0: अच्छा
1: अच्छा रोहिणी जी, आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि हानाबी का आयोजन मुख्य रूप से नदी किनारे या समुद्र तट पर किया जाता है, क्योंकि एक तो इससे लकड़ी के मकान सुरक्षित रहते हैं
0: और दूसरे इन इलाकों में हवा भी होती है जिससे धुआं फटाफट गायब हो जाता है।
1: जी बिल्कुल सही। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि हानाबी का शाब्दिक अर्थ क्या है?
0: हाना तो पता है, हाना यानी फूल, जो जापानी लोगों को बेहद प्रिय होते हैं। यहाँ हर मौसम का एक खास पुष्प मिल जाएगा। बी का क्या अर्थ है?
1: बी का अर्थ है आग, यानी हानाबी का मतलब हुआ आग के फूल।
0: अरे वाह, आग के फूल! तभी मैं देखूं कि ज्यादातर हानाबी जब आकाश में फूटती हैं, सुंदर से फूल के जैसे दिखाई देती हैं, जैसे गुलदाउदी का फूल हो।
1: जी, गुलदाउदी और पियोनी के फूलों जैसी आतिशबाजी सबसे लोकप्रिय हैं। फिर कुछ आसमान में शिदारे यानागी यानी वीपिंग विलो या तितली या झरनी जैसी भी दिखाई देती हैं। स्याह आकाश जब इनसे रोशन होता है तो कितना रोमांचक दृश्य दिखता है।
0: सचमुच, गर्मियों में इन उत्सवों की धूम सारी थकान और बेचैनी खत्म कर देती है और मन उल्लास से भर जाता है।
1: वाकई, और मेरा मन हर सप्ताह मिलने वाले ढेर सारे पत्रों से खुश हो जाता है। तो उठाते हैं ये पत्र जिनमें श्रोता मित्रों की राय किसी पटाखे से कम नहीं है।
0: तो चलिए, मैं लेती हूँ यह पत्र। पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से प्रदीप बसाक ने उनके गांव में आयोजित होने वाली श्री जगन्नाथ प्रभु रथ यात्रा के बारे में जिक्र किया है।
1: अरे वाह, हम भी अभी जापान के उत्सवों की बात ही कर रहे थे और देखे ये उत्सव पर पत्र आ गया। जानती है, 2 साल पहले चेरी की देव से कार्यक्रम के लिए मैंने टोक्यो में आयोजित होने वाली रथ यात्रा की रिपोर्टिंग भी की थी।
0: अरे वाह,
1: चलिए आगे बताएं कि प्रदीप जी क्या लिखते हैं।
0: जी लिखते हैं, शुभ रथ यात्रा के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव में रथ यात्रा का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि हमारे गांव की परंपरा, आपसी सद्भाव और मिलन का एक अनोखा अवसर है। रथ यात्रा के अवसर पर हमारे गांव में भव्य मेला लगा है। मेले का उत्सवमय वातावरण मन को आनंद से भर देता है। गर्मा गर्म जलेबी, तरह तरह की मिठाइयाँ, कुरकुरे पापड़, भुनी हुई मूंगफली, स्वादिष्ट घुगनी, मुगलई तथा अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। सभी के बीच प्रेम, अपनापन और भाईचारे का सुंदर वातावरण बन जाता है। यही मिलन हमारे ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी पहचान है तथा नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम भी है। मेरा विश्वास है कि रथ यात्रा का यह पावन उत्सव हम सभी के जीवन में प्रेम, सद्भाव, मानवता और पारस्परिक सम्मान का संदेश फैलाएगा।
1: सभी मित्रों को भी रथ यात्रा की बधाई। और प्रदीप जी, आपने अपने यहाँ की जगन्नाथ यात्रा की ऐसी विस्तृत जानकारी दी कि लगता है मानो हम भी आपके साथ मेले में पहुँच गए हों। और देखिए, प्रदीप जी ने अपना एक और पत्र भेजा है जिसमें वे जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के फुकुओका के पारंपरिक हाकाता गियोन यामाकासा उत्सव के बारे में एनएचके वर्ल्ड जापान के फेसबुक पोस्ट के बारे में उन्होंने लिखा है
0: जी।
1: लिखते हैं कि इस उत्सव के बारे में जानकर मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। लगभग 780 वर्षों से भी अधिक समय से आयोजित होने वाला यह उत्सव केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह लोगों की एकता, साहस, अनुशासन और पारस्परिक सहयोग का अद्वितीय प्रतीक है। सजी हुई भारी भरकम झांकियों को कंधों पर उठाकर लोग जिस उत्साह और अद्भुत सामंजस्य के साथ तेजी से आगे बढ़ते हैं, उसे देखकर सहज ही समझा जा सकता है कि किसी परंपरा को जीवित रखने के लिए लोगों का प्रेम कितना गहरा हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी भावना और उत्साह के साथ इस उत्सव को आगे बढ़ाना जापानी संस्कृति की मजबूत नींव का परिचायक है। विशेष रूप से ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस उत्सव को जापान की महत्वपूर्ण अमूर्त लोक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी स्थान मिला है। ये केवल जापान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक विरासत की एक अमूल्य धरोहर है। ऐसे उत्सव हमें ये शिक्षा देते हैं कि यदि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और सम्मान करें तो वे विश्व मंच पर भी सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकती हैं।
0: प्रदीप बसाक जी, सच कहा, ये परंपराएं हमें अपने अतीत, अपनी माटी से जोड़े रखती हैं। शांग्रीला जी, इस गियोन यामाकासा उत्सव को अपनी आंखों से देखने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वेबसाइट पर इसकी झलक देखकर ही मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना शानदार उत्सव है।
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: इतनी भारी भरकम पालकियों को लोग जैसी मुस्तैदी के साथ लेकर दौड़ते हैं और जिस तरह से वे उसे जरा भी गिराए बिना मुड़ते हैं, वो वाकई हैरत अंगेज है।
1: सचमुच इस तरह का सामंजस्य यहाँ की लगभग हर मात्सुरी में देखने को मिल जाता है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले श्रोताओं को बता देते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी। तो मित्रों, नोट करें फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: कार्यक्रम चरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। अब यह पत्र आया है ओडिशा में केसिंगा से। लिखने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं सुरेश अग्रवाल। अरे वाह, सुरेश जी ने भी हाकाता गियोन उत्सव का जिक्र किया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, लिखते हैं, वार्षिक गियोन यामाकासा उत्सव का रोमांच, उल्लास और सांस्कृतिक वैभव समेटे आपका वीडियो देखकर मन आनंद और विस्मय से भर उठा। विशाल और भारी भरकम पालकियों को कंधों पर उठाए कहारों की टोलियां जिस अद्भुत समन्वय, अदम्य उत्साह और तीव्र गति से नगर की सड़कों पर दौड़ रही थीं, वह दृश्य सचमुच अविस्मरणीय और अलौकिक अनुभूति कराने वाला था। जन कल्याण एवं रोग निवारण की प्रार्थना की यह परंपरा भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं से आश्चर्यजनक साम्य का आभास कराती हैं। इतनी सुंदर, ज्ञानवर्धक और मन को संपन्दित कर देने वाली प्रस्तुति के लिए आभार।
1: सुरेश जी, आभार आपका भी, जो रथ यात्रा के व्यस्त समय के बीच आपने वक्त निकालकर पत्र लिखा। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब आप कार्यक्रम सुनने के साथ ही वीडियो में प्रेषित जानकारी का भी आनंद लेने लगे हैं।
0: जी,
1: कुछ बातों को देखिए शब्दों में बांधना असंभव सा हो जाता है, उन्हें देखने में ही मजा है। और ये 19 जुलाई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के बारे में सुरेश जी ने लिखा है, जापानी फोल्डिंग पंखे सेंसु तथा उसके इतिहास पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक लगी। इस प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। भारत में भी हाथ से झलने वाले पंखों की समृद्ध परंपरा रही है। आज भी देश के कुछ क्षेत्रों में इनके विविध और आकर्षक स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। यद्यपि बैटरी से चलने वाले छोटे पंखों के प्रचलन के बाद हाथ पंखों का उपयोग काफी कम हो गया है, फिर भी ये हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत का सुंदर प्रतीक है। सही कहा उन्होंने इस बात को। और इसी संदर्भ में मैं ओडिशा के बांस की पत्तियों से निर्मित एक आकर्षक डिजाइनर हाथ पंखे का चित्र साझा कर रहा हूँ, आशा है यह आप सभी को पसंद आएगा। देखिए रोहिणी जी, उनका भेजा ये चित्र कितना रंग बिरंगा पंखा है।
0: अरे वाह, ऐसे पंखे तो मैंने भी अपने यहाँ देखे हैं।
1: अच्छा?
0: हाँ, और ये हरे और गुलाबी पंखे की डिजाइन कितनी सुंदर है।
1: जी वाकई।
0: और इसका आकार तो एक झंडे जैसा दिख रहा है।
1: जी हाँ जी हाँ, और वाकई इसे देखकर दादी नानी की याद आ गई।
0: हाँ।
1: उनके सिरहाने ये अक्सर रहता था।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और इसको घुमाते हुए हाथों की बढ़िया कसरत हो जाती है।
0: बिल्कुल, सो तो है।
1: अच्छा, 19 जुलाई के कार्यक्रम के लिए बनाई गई प्रोमो रील को अनेक लोगों ने पसंद किया और कमेंट भी किया है। फेसबुक पर कुछ कमेंट थे। जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे लिखते हैं, हमें आपका कार्यक्रम चेरी के देश से बहुत अच्छा लगता है। पश्चिम बंगाल की प्रियंका पांडे ने इसे वाव बताया है। वहीं लता पांडे, अनिल डोबरियाल, अरविंद कुमार मिश्रा, रेणु मिश्रा, सोनी मोनी और श्रुति ने इमोजी के जरिए इसे मजेदार बताया है।
0: आप सभी का आभार। शांग्रीला जी, आजकल ये प्रोमो रील लोगों में काफी खास लोकप्रिय हो रही है। ताना बाता उत्सव के बारे में रील तो ऐसी वायरल हुई कि पिछले 2 सप्ताह में 35,000 से ज्यादा लोगों ने देख ली है।
1: वाकई?
0: हाँ। वहीं जापान में ऑटो रिक्शा की रील भी खूब पसंद की गई और बहुत मजेदार कमेंट भी आए हैं। मोनिता मिधा लिखती हैं, लव दिस लाइन, ऑटो मिल गया जापान में। वहीं उमेश कुमार शर्मा कमेंट करते हैं, जापान में भी ऑटो होता है यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने हमें चालक महोदया से मिलवाया, मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने हिंदी में आपसे बात की यह जानकर आश्चर्य भी हुआ।
1: उमेश जी, जैसा कार्यक्रम में हमने बताया था कि ऑटो चालक एनएचके में हमारी सहयोगी होरी कोशी जी हैं, उन्होंने शौकिया ऑटो खरीदा है। भारत प्रवास के दौरान उन्हें इसकी सवारी इतनी मजेदार लगती थी कि मौका मिलने पर उन्होंने इसे खरीद ही लिया, लेकिन इसका आयात करने में उन्हें भारी रकम खर्च करनी पड़ी।
0: अब शौक के आगे खर्च को क्या देखना, शौक बड़ी चीज है। इस अगले कमेंट को पढ़कर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। आयुष खान लिखते हैं, 500 येन काटो ओवर एक्टिंग के।
1: आयुष जी, मजा आ गया आपका कमेंट सुनकर, 500 येन काटो ओवर एक्टिंग के। जरा सोचिए आप श्रोताओं के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इस रील पर ओम अग्रवाल का कमेंट है, जहां जापान में रोज नई नई कारें आती हैं, वहां इस कलयुग 2026 में ऑटो, भाई वाह।
0: ओम अग्रवाल जी, आजकल जापान में ऑटो रिक्शा खूब लोकप्रिय हो रहे हैं।
1: जी हाँ, लोग नए नए तरीकों से इनका उपयोग कर रहे हैं। कोई इसमें चाय की टपरी बना रहा है, तो कोई इसमें सोने का इंतजाम कर लंबी सैर की सवारी बना रहा है। ओम अग्रवाल जी का एक और कमेंट है, मेरे घर के पास भी 5 साल से ऑटो खड़ा है, लेकिन तोक्यो में जानकर आश्चर्य हुआ। हेमराज इसको एकदम दया वाला बताते हैं। लाल बाबू पांडे ने लिखा है, भारत में आपका स्वागत है। राघवेंद्र नौटियाल ने इसे गजब बताया। मुरारी शाह ने बहुत बढ़िया लिखा और मृणालिका ओझा, अशोक मोजीदारा, राजेश गिरी ने इमोजी के जरिए नमस्कार लिखा है।
0: योकोहामा में जापानी महिला द्वारा संचालित दिलजोड़ कैफे की रील पर गोविंद सोनी का कमेंट है, शानदार प्रयास। भाषा और संस्कृतियों की समझ मजबूत होने से रिश्ते निश्चित ही प्रगाढ़ होंगे। जापान एक अद्भुत राष्ट्र है और जितनी भी मेरी समझ है उसके अनुसार ये एक शानदार देश है। मृणालिका ओझा लिखती हैं, बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण, सुंदर। वहीं अशोक डीवाई ने लिखा है कि दोनों शांतिप्रिय सभ्यता मिलकर एशिया टाइगर बन जाएंगी।
1: इतने मजेदार कमेंट के लिए सभी मित्रों का आभार। आपके कमेंट से जान पड़ता है कि रील बनाने के हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और रोहिणी जी, कार्यक्रम के शुरू में हमने हनाबी यानी आतिशबाजी की इतनी चर्चा की, तो क्यों ना चलते चलते ये गीत सुना जाए।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: गीत है हनाबी, जिसे स्वर दिया है आई ने।

0: दोस्तों आप गीत का आनंद लें और NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और रोहिणी रमन को।
0: सायोनारा, नमस्कार।